सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली। फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह नहीं।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तनिषा
1: तनिषा मोहित चौहान की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना आप जैसा कोई मूवी से ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान 9th ऑफ सितंबर वेंसडे का दिन वीकेंड एकदम नजदीक हां जी तो खुशी तो है इस बात की और वीकेंड को कहना चाहूंगी
2: तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है
1: बाय गॉड वेल कैसे हैं आप क्या हालचाल है कल का दिन कैसा रहा आई होप सब ठीक रहा होगा एंड किस किस ने 80s वाला ट्रेंड कर लिया क्योंकि देखो हमने तो कर लिया आप कितना भी दूर जाए मैं आपके साथ ही हूँ जी हाँ इफ यू आर गोइंग टू वर्क राइट नाउ इफ यू आर ड्राइविंग प्लीज ड्राइव सेफली फोन वोन भी ध्यान नहीं देना मुझे सुनते रहो ठीक है मुझे मैसेज करना है तो मैं इंतजार कर लूंगी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एंड दोज वर नॉट ड्राइविंग बट आर ऑन द वे टू वर्क बस में है कार में है कैब में है जैसे भी अगर आप कर सकते हैं मैसेज तो 3311 1063 पर एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दीजिए मेरा भी दिल खुश

Baki, wishing everyone an amazing morning and way more amazing day. Hanji, sab badhiya hoga ekdam. Exactly, वो तो है ही और लंबा भी चलने वाला है और साथ में ये कमाल के गाने तो आ ही रहे हैं और भी सरप्राइजेस हैं बीच में सारे एक साथ सुना दूंगी तो कैसे मजा आएगा ना और ढेर सारी बातें भी कर रही हैं आपसे लेकिन फिलहाल इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेज का 3311 1063 Stay tuned to Radio Olive Jio Bindas मेरी जान

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindaas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: मिस्टर एंड मिसेस माही से बनिया और सागर की आवाज में बड़ा ही सोलफुल सा गाना है ये ना, जिस तरह से गाया है, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड स्कोर दे हैव गिवन एंड द लिरिक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर एंड वी हैव गॉट मैसेजेस ओवर हियर। सो नाजनी जी का मैसेज आया है। नाजनी जी कल नहीं थी यार, ठीक तो है ना सब, या फिर कल देर हो गई उठने में। Good morning. When you wake up asking what's wrong, you'll find plenty that's wrong. But when you wake up asking what's possible, you'll discover opportunities you never noticed before. I keep saying this, you know. When you wake up, you just have to tell yourself ki bhai, I am going to have an amazing day, no matter what. Aur agar aapka jo ye dimag hai, aapko kuch aur batane ki koshish kar raha hai na ki nahi, aaj to mood kharab hai bro, usse bolo shut up. You do not take decisions on my behalf. I do and you follow. जी हाँ, दैट एक्चुअली चेंजेस थिंग्स इन योर, यू नो, इट समहाउ रिवायर्स योर ब्रेन। जब आप उससे पावर ले लेते हो, वो घबरा जाता है कि यार ये तो मुझे ओवर पावर कर रहा है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट गोइंग योर वे इवेंचुअली। यप, आई एम टेलिंग यू, दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। ओके, बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। एंड देन वी हैव अबरार जी का मैसेज हो गया, गुड मॉर्निंग। और शशिकांत पाटिल जी का मैसेज भी आया है, कहते हैं थॉट फॉर द डे। ओके, Being humble means recognizing that we are not on earth to see how important we can become, but to see how much difference we can make in the life of others. And that is so true. Sandhu ji ka bhi good morning aaya hai. A beautiful day begins with a beautiful mindset. Your future is created by what you do today, not tomorrow. God bless you all, Jio Bindas. Zulfi ji ne bhi good morning bheja hai ji. कहते हैं, मे दिस डे ब्रिंग यू कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड एंड अ सेंस ऑफ काम। एम्ब्रेस ईच मोमेंट विद जॉय एंड ओपननेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। आई एम एम्ब्रेसिंग दिस डे विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ वीकेंड, वेटिंग फॉर इट ईगरली। देन आई हैव अ मैसेज फ्रॉम हुमैर खान। Good morning, Humair here. Keep spreading those good vibes on the radio. Thank you so much. You guys keep sending this love और ये vibes बस multiply ही होती रहेंगी। जी हाँ, और कमाल के गाने भी। Sending cool song of the hour for you. सुनते रहिए Radio 106.3 FM. जी, बिंदास मेरी जान। Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना cool song of the hour.
1: क्या बात है सर? क्या पर ये बात है।

0: दनिशा
1: दनिशा राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में दिल तो बच्चा है जी और इसे बच्चा ही रहने दीजिए जी हाँ यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम दनिशा है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड 999 एनालॉजी ठीक है कहते हैं कि इफ यू स्टे कंसिस्टेंट इन समथिंग फॉर 999 डेज इट गोज ऑन ऑटो पायलट मोड ठीक है बेसिकली राइट नाउ द बॉडी वी हैव यू नो वेदर यू आर लाइक सुपर फिट सुपर फाइन और कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लास्ट 1000 मील्स यू हैड ओके एंड वट एवर state of mind you have right now is because of the last 1000 conversations you had jo bhi last 1000 logo se aap mile ya koi bhi conversation aapne kari uski wajah se jo bhi state of mind hai wo abhi hai and your bank account is the way it is whether it's like flourishing touch wood and whether it's you know slowly growing or whatever the state is that is because of your last 1000 decisions so kehne ka matlab sirf itna hai ki agar aap that 999 times tak consistent rehte ho तो उसके बाद ना चीजें ऑटो पायलट पे चली जाती है एंड आपको आउट ऑफ द वे जाकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते एफर्ट्स आर स्टिल रिक्वायर्ड उसके बाद बंद नहीं कर देना है बट एक्स्ट्रा में नहीं जाना है तो ये जो 999 डेज है ना फर्स्ट 999 डेज यार आई साउंड लाइक those parents or the teachers ki beta 10th kar lo sab theek ho jayega beta 12th pass kar lo theek ho jayega beta college pass kar lo theek ho jayega aur what theek you know what I mean right but this actually works kyunki it is in our hand right ki hum kya cheeze apne mind mein feed kar rahe hain what kind of food we are giving our body and kis tarah ka content hum consume kar rahe ye sari cheeze हमारा सारा जो सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर है जिन लोगों से हम मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं वो सब हमें शेप कर रहा है स्लोली एंड स्टेडली हम रियलाइज नहीं करते देन वन डे वी फील यार मुझे तो कमर में बहुत दर्द होने लग गया है क्यों क्योंकि मैं पूरा दिन अपने चेयर पे बैठ के अपने सिस्टम पे देखती रहती हूँ कमर दर्द के साथ साथ मुझे चश्मा भी लग गया है सो यू नो वो हमें ग्रेजुअली रियलाइज होता है बट अगर आज ही रियलाइज करके उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे तो शायद हम उस स्टेज से बच जाएं राइट सो थिंक व्हाट यू वांट टू डू थिंक वेयर यू वांट टू रीच फिलहाल मैं लेकर आई हूँ एक प्यारा गाना आपके लिए वसुंधरा दास और राशिद अली खान साहब की आवाज में जाने तो या जाने ना से कहीं तो होगी वो इंशाल्लाह होगी स्टे ट्यून्ड

Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials. सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office.

0: What a beautiful track. Tanisha ke saath suna aapne Radio Olive 106.3 FM par. Bindaas mornings chal rahe hain yahan par.
1: Radio Olive presents Blackboard Stories.
0: Blackboard Stories mein aaj ka jo mera sawal hai, kaafi aasan hai. Ekdam easy peasy. ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू मील्स यू कैन नेवर हैव फॉर ब्रेकफास्ट. ऐसी दो कौन सी मील्स हैं जो आप ब्रेकफास्ट के लिए कभी नहीं खा सकते हैं. एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि ब्रेकफास्ट इज अ रियली इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, सो उसे स्किप ना किया कीजिए. ठीक है, सो व्हाट आर द टू मील्स विच यू कैन नेवर हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. एंड टू ऑल द क्यूटीज हु आर ऑन देयर वे टू स्कूल्स, जो पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं और अगर बस में हैं, आई होप यू गाइस हैव एन अमेजिंग डे. और अगर मौका मिले तो एक गुड मॉर्निंग भेज देना मुझे. ठीक है, सुनते रहो रेडियो ऑल. सी यू, बिंदास मेरी जान.

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो विद मजराती।
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
4: मिल्क चीज योगर्ट लवली
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
5: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: कनिका कपूर की आवाज में लव लेटर ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. So right now the temperature is 35 degrees and it feels like 34 degrees. What? 1% कम महसूस हो रहा है, इसी से खुश हो गई हूँ मैं. आप देख रहे हो मतलब पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ रही हूँ मैं चीज़ों में. जी हाँ, बट स्टिल दोपहर तक काफ़ी क्रेजी गर्म हो जाएगा. इट विल बी यू नो स्वेल्टरिंग हीट विल बी देयर, ऐसा कहा जा रहा है. सो प्लीज़ इंडोर्स ही रहिएगा, बाहर ना जाइएगा. एंड इंडोर्स जब मैंने बोला ना तो मुझे याद आया कि एवरीबडी हियर इन द ऑफिस व्हेन आई टेल देम कि मैं इंदौर से हूँ, इंदौर, दे आर लाइक तुम इंडोर से हो तो क्या तुम्हें लगता है हम आउटडोर से हैं. या लेम, बट आई हैव टू बेयर दैट. दैट्स व्हाई लेम जैम्स लेकर आई थी मैं कि भाई जवाब तो ऐसे ही दूंगी. कमिंग बैक टू द वेदर, सो या हाईएस्ट टेम्परेचर विल गो 44 डिग्रीज एंड लोएस्ट 34 डिग्रीज. बट दोपहर में तो बाहर निकलने का ही नहीं है. दोपहर में शाम को कोशिश करो कि जितना कम बाहर निकलो उतना बेहतर है. बिकॉज यू नो समटाइम्स ना ऐसे होता है कि वो जो हीट है वो इतनी सफोकेटिंग हो जाती है, इतनी डेंस हो जाती है कि उसमें ब्रीथ करना भी मुश्किल लगता है. एंड ये मैंने पहली बार ऐसे समर्स में एक्सपीरियंस किया है. ओब्वियसली इंडिया में भी काफ़ी भयंकर गर्मी होती है पर इतनी क्रेजी नहीं होती है. एंड मॉरिशस में तो मस्त एकदम गर्मी होती थी, तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल बुरा लगता ही नहीं था कि समर चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, यू नो. बट देन कतर इज कतर. ये जो समर वाला टाइम हम स्पेंड करते हैं उसके बाद जो हमें वो प्लेजेंट वेदर मिलता है विंटर वाला, ओ हो, इट्स ऑल वर्थ इट. मुझे नहीं बुरा लग रहा है इसके लिए, ठीक है. तो जल्दी से विंटर आने वाला है लेकिन उससे भी जल्दी आएगा जबरदस्त हिट अभी के अभी. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जी बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: तनिशा।
1: ये गाना इस वक्त सारे एम्प्लॉयज जो हैं कतर में वो मिनिस्ट्री को डेडिकेट कर रहे हैं, क्यों बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। तनिशा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। सो नया वेज पेमेंट रूल आ गया है कतर में एंड इट इज यू नो इफेक्टिव इमीडिएटली। जी, सो नाउ एम्प्लॉयर्स इन कतर मस्ट ट्रांसफर एम्प्लॉयज वेजेस विद इन 7 days ऑफ द सैलरी ड्यू डेट। 7 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जानी चाहिए एंड वो जो पेमेंट है इट मस्ट बी मेड थ्रू WPS, that is Wage Protection System. और जो salaries हैं they must be deposited into employees' bank accounts with financial institutions in Qatar. For monthly और जो annual workers हैं उनके wages first day of each calendar month के लिए consider किए जाएंगे due. और जो दूसरे हैं जो weekly basis पे या फिर 2 weeks वाले पे काम करते हैं उनके लिए first day of every 2 weeks they should get their wages. ठीक है, ये जो नया रूल है ये मिनिस्टर ऑफ लेबर डिसीजन नंबर 50 ऑफ 2026 के तहत आया है एंड ऑफिशियल गजट में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है यस्टरडे 8th ऑफ सितंबर को एंड इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली। जी हाँ, तो आप समझ रहे हो कि क्यों मैंने कहा कि एम्प्लॉयज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को ये वाला गाना डेडिकेट कर रहे हैं। Well, sending an amazing track your way, Arijit Singh ki awaz mein. Saath mein Sunidhi Chauhan bhi hai. Main Sunidhi Singh bolne wali thi. Sunidhi Chauhan bhi hai. Ye jawani hai diwani se. Sundariya Radio 106.3 FM. Jio, bindas meri jaan.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Ludo Movie से अरिजीत सिंह की आवाज में हरदम हम दम सुना आपने. एंड तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और कतर में शुरू होने वाला है कतर स्टार्स लीग QSL कप 2026-27. जी हाँ, 20th ऑफ सितंबर को ये होने वाला है स्टार्ट. और इसमें 19 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, 11 टीम्स फ्रॉम दोहा बैंक स्टार्स लीग एंड 8 टीम्स फ्रॉम जटोर लीग. और ये जो टीम्स है दे विल बी डिवाइडेड इनटू 5 लेवल्स, और वो लेवल्स बेस्ड होंगे उनके प्रीवियस सीजन की स्टैंडिंग्स पर. ठीक है, सो इन द फर्स्ट स्टेज ईच टीम विल प्ले 4 मैचेस अगेंस्ट टीम्स फ्रॉम द अदर लेवल्स एंड द टॉप 8 टीम्स विल एडवांस टू क्वार्टर फाइनल्स. और ये जो क्वार्टर फाइनल्स है दे विल बी सिंगल मैच नॉकआउट गेम्स. अगर नॉकआउट मैच ड्रॉ में एंड होता है तो विनर विल बी डिसाइडेड डायरेक्टली बाय पेनल्टी शूट आउट. There will be no extra time. So it's going to be interesting. And if you have been following QSL, toh 20th September is the date. Yaad rakhiye aur sunte rahiye Radio 106.3 FM. Jio, bindaas.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा
2: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तक। मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक।
2: अरमान मलिक
1: 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

राघव चैतन्य की आवाज में मेट्रो इंद्रनों से दिल का क्या ब्यूटीफुल ट्रैक। जब ये थिएटर में देखा कर रहा हूँ, आई हैड गूज बम्स लिटरली। तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर, बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किया है कि देयर विल बी temporary traffic closure at U-turn at Lucelle Marina intersection for motorists approaching from the north. ठीक है, सो ये जो क्लोजर है ये आज शाम से थर्सडे सितंबर 17 तक रहने वाला है, दैट इज नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, और जो मोटरिस्ट है जो उस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज यू नो डेजिग्नेटेड ट्रैफिक रूट से जाइए, उन्हें फॉलो कीजिए एंड रोड साइंस का भी ध्यान रखिए ड्यूरिंग द क्लोजर पीरियड। और अगर आपका रास्ता वहां से जाता है तो कोई ऑल्टरनेटिव रूट आप पहले से ही पता करके रखो, सो दैट बाद में देरी ना हो जाए। ठीक है, देखा हाउ मच आई केयर फॉर यू, कि आपको देर ना हो जाए इसके लिए बता देती हूँ मैं पहले ही। सो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का और संभाल के ड्राइव कीजिएगा, आप इम्पोर्टेंट हैं, इसे कभी मत भूलिएगा। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ. सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जेस्टन निशा को बिंदास मॉर्निंग में.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Danisha. Nilanjana aur Dastandar ki awaaz mein main wapas aaunga movie se. Mascara only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Bindaas mornings chal rahe hain yahan par. Wacky wisdom mein aaj hum baat karenge mere exposure effect ki. Okay, so as I keep saying, mascara song for that matter, ये गाना मुझे initially सुन के बिल्कुल पसंद नहीं आया था. But then constantly मैं इसको you know reels पे सुन रही हूँ, यहाँ radio पे चल रहा है, and you know wherever you go, उस time पे ये गाना constantly हर जगह सुनाई दे रहा था, and it started growing on me. And now I like the song, but initially I did not like it, और अभी मुझे वो पसंद है. पर क्या गाने में कुछ change हुआ? नहीं हुआ. Right, so that's the thing. एक चीज़ जो आपको initially पसंद नहीं होती है and आप उससे बहुत ज़्यादा expose होते हो, बस for that reason only you start liking this thing. Yeah, जैसे 80s का trend चल रहा है ना अभी, ये AI pictures वाला. So I was getting annoyed कि क्या कर रहे हैं लोग, सबको पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, but we are constantly doing it. And then I saw मेरे feed पे हर कोई 80s वाला trend follow कर रहा है. And then कल आके मुझे कशिश ने भी दिखाया, सिमरन ने भी मुझे भेजा, सुदेव भी बोल रहे हैं, मुस्कान भी बोल रही है. And then I was like, if everybody is doing it, let me try also. And then we all made our 80s वाला pictures and we posted on our social media, by the way. If you haven't, जाके check out करो. But that, you know, liking things just because you have been exposed to it too much is called mere exposure effect. And I feel आजकल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमें पसंद आ रही है या जो habits हम inculcate कर रहे हैं अपने अंदर, वो because of this effect ही है. क्योंकि social media पे एक चीज़ के पीछे जब पड़ जाते हैं ना लोग, तो वो चलता ही रहता है जब तक आप उससे एडिक्टेड ना हो जाएं या फिर बिल्कुल ऑब्सेस्ड ना हो जाएं. सो या सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक खोसला रघु की आवाज में, एकदम ब्रांड न्यू गाना है मिले जो सुकून. स्टे ट्यून एंड जय बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है. फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Harshdeep Kaur ki awaaz mein oof bada hi sundar sa gaana only on radio all 106.3 fm Tanisha aapke saath bindaas mornings chal raha hai yahan par aur waqt ho chuka hai
2: ye hai chalti phirti dictionary
1: जी सो आज जो मैं वर्ड लेकर आई हूँ अपनी डिक्शनरी से ये मुझ पे तो बहुत जोर से सूट करता है प्लीज बताइएगा कि आप भी ये सब करते हैं सो द वर्ड इज टैरेंटिज्म टी ए आर ए एन टी आई एस एम टैरेंटिज्म सो इसका मतलब होता है रैंडमली एक अर्ज नहीं होती डांस करने की सडनली आउट ऑफ द ब्लू या दैट इज कॉल्ड टैरेंटिज्म नाउ देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि आया कहाँ से है सो बेसिकली इटली में जो टैरेंटुला स्पाइडर होती है उसके बाइट करने से ना डांस मेनिया हो जाता है लोगों को देर इज दिस यू नो सडन अर्ज टू डांस बेसिकली द पर्सन बिकम्स रेस्टलेस एजिटेटेड एंड अनकंट्रोलेबली ड्रिवन टू डांस वेरी वियर्ड बट या दैट हैपन्स एंड वहीं से टैरेंटिज्म आया है यू नो जब रैंडमली आपको फोन दो रीजन ऐसे बस बैठे हैं एक बढ़िया गाना आ गया है गाना नहीं भी आया तो लगा यार नहीं डांस करना है और मेरे साथ ये काफी होता है तो क्या आप है टैरेंटिज्म के शिकार प्लीज बताएं मुझे यार And this one, oh, love it, yeah. और हर्षदीप कौर की आवाज में एक और बेहद कमाल गाना All these tracks are coming up your way in this hour, Sundari Radio, Jio Bindas.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: सोनू निगम और जसपिंदर ने दूल्हा की आवाज में दूल्हे राजा मूवी से आंखियों से गोली मारे कल्ट क्लासिक ट्रैक ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और बात करते हैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की.
1: टेक टॉक
0: वो थोड़े AI एजेंट्स में कमी हो रही थी ना, तो मेटा ने एक और लिया है. जी हाँ, मेटा म्यूस आ चुका है मार्केट में. मतलब दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इट, पर वो अभी सारी कंट्रीज में नहीं लॉन्च हुआ है. सो ज़करबर्ग साहब आए थे इंस्टाग्राम पे खुद बताने के लिए कि भाई मेटा म्यूस आ गया है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अनदर AI एज पर हिम. सो वो सिर्फ आपको जवाब नहीं देगा आप कुछ सवाल पूछोगे तो, वो आपका काम एक्चुअली करके देगा. लाइक यू हैव टू ड्राफ्ट अ मेल, तो वो मेल तो ड्राफ्ट करेगा. आप उसे ये भी बोल सकते हो कि किसे ये भेजना है, तो वो आपके अकाउंट्स के थ्रू उस मेल को सेंड भी कर देगा. नाउ से यू हैव टू प्लान अ ट्रिप टू सर्टेन कंट्री, तो उसके लिए पूरी रिसर्च करके वो आपके लिए सारी ट्रिप की जो ज़रूरतें हैं, यू नो द स्टे बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, वो सब भी अरेंज करके देगा. अभी आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया एंड लाइक आपने देखा एंड यू हैव टू सर्च इट एंड बाय इट, तो आप उसे बोल सकते हो म्यूज़ को कि फाइंड दिस प्रोडक्ट फॉर मी एंड बाय इट. तो वो पेमेंट सर्विसेज से भी यू नो उसका तालमेल बिठा के फुल ऐसे शॉपिंग कर लेगा आपके लिए. सो इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू, यू नो अप टू इट्स लिमिट, यू नो राइट. और साथ में उनका कहना है कि इसमें जो प्राइवेसी है उसका काफ़ी ख्याल रखा गया है. सो उसका एक डेडिकेटेड सिक्योर सर्वर है दैट इज़ कॉल्ड म्यूज सिक्योर VM, जहाँ पर सारा डेटा स्टोर होगा. एंड कुछ भी ऐसा यू नो सेंसिटिव सा इन्फॉर्मेशन लगा और लग रहा है कि कुछ ना कुछ कोई डेटा निकालने की कोशिश कर रहा है समवेयर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब चीज़ के लिए आपका अप्रूवल मांगा जाएगा. ऐसा बोल रहे हैं, बोलते तो ये बहुत कुछ है, मुझे भरोसा नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी, मेटा एंड ऑल. आई थिंक ऑल द AI एजेंट्स, इट इज़ रिस्की. सो बट इट साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज द थिंग्स इट कैन डू आर रियली इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी ये कैसे चलता है, और जब हम तक पहुँचेगा हम भी ट्राई करके देख लेंगे एक बार, है ना. फिलहाल सुनते हैं दिल मेरा मुफ्त का, मेरा नहीं नंदिनी सरकार कह रही है. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office.

0: Tanisha.
1: Guru Movie se Maya Maya, what an amazing track, yaar. You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha aapke saath. Bindas Mornings chal rahe hain yahan par. Reminder de rahi hoon ki hume follow kar lo. जी हाँ, radioolive.qa is the handle. Instagram, Facebook पर follow कर लो फटाफट से. And अब जा ही रहे हो वहाँ तो चेक कीजिएगा 80s वाली जो फोटो डाली है, जरा कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है. कुछ लोग कह रहे हैं फुल मेकओवर ही हो गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं अरे शक्लें तो सेम है. वैसे मोस्टली जितने भी लोगों ने ये ट्रेंड फॉलो किया है एंड दे यू नो ट्राई टू रीमेक देयर पिक्चर्स विद दिस 80 वाला ट्रेंड, सबकी शक्लों में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बस बालों में वॉल्यूम डाल दिया है. मुझे देखकर तो यही फील हो रहा है. क्या आपको कुछ और नजर आया है? क्योंकि मैं तो सिर्फ यही देख पा रही हूँ, और तो कुछ चेंज नहीं. और हाँ, कपड़े सबके सेम है. पिंक कलर वॉज टू मच इन. पिंक, ऑरेंज, येलो टाइप्स के कलर्स आई थिंक बहुत ज़्यादा इन थे उस टाइम पे. सो सबके कपड़ों में आपको वही देखने को मिलेंगे. सो चेकआउट कीजिए हमारा भी पोस्ट. एंड ऑल्सो जो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर होती है ना, आपको स्निपेट्स सुनने को मिलते हैं जिसके, वो फुल कॉन्वर्सेशंस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं. सो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए. और फिलहाल भेज रही हूँ हर्षदीप कौर की आवाज़ में कतिया करूँ रॉक स्टार से. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

अरिजीत सिंह की आवाज में आबाद बर्बाद लूडो मूवी से वेल इश्क में तो यही होता है. यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा है आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. 9:52 हो चुका है क्लॉक में और वक्त हो गया मेरे जाने का. मेरी जान मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. थर्सडे है तो जोश तो अलग ही लेवल हाई होगा क्योंकि वीकेंड में ही जान. और आपको वीकेंड में यू नो पहुँचाना ऐसे फुल एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ मेरी जिम्मेदारी है. एंड आई विल डू दैट. डू नॉट वरी अबाउट इट. यू जस्ट हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ टुडे. कोई छोटी मोटी बात से ऐसे बॉदर हो ना तो लेट गो करने का, ठीक है? दिन नहीं बर्बाद करने देना किसी चीज को अपना, है ना? चिल करने का. एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद अस 3311 1063 इज द नंबर. यू कैन मैसेज अस एनी टाइम. यू कैन कॉल अस 4444 1063 पर. वी आर हियर फॉर यू मेरी जान. सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Yes, of course, Life Must है. मतलब अच्छा एक मजेदार सवाल पूछती हूँ आपसे. अगर आपका जो बर्थ है वो 1980s में हुआ होता तो आप कैसे दिखते? हर कोई सोशल मीडिया पे बस यही ट्रेंड फॉलो कर रहा है. बाल थोड़े बड़े होते, कपड़े थोड़े कलरफुल होते, एक हाथ में सनग्लासेस और बैकग्राउंड में शायद कोई बॉलीवुड का सुपरहिट गाना चल रहा होता. आजकल इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड चल रहा है. लोग अपनी आज की तस्वीरें AI से 1980s के अंदाज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं. और कोई छूट ना जाए, हर कोई दूसरा, मतलब हर दूसरा आदमी इंस्टाग्राम पर आपको दिख जाएगा. पूरा लुक बदल जाता है, हेयर का, क्लोथ, लाइटिंग, बैकग्राउंड, और अचानक वही इंसान ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म का कैरेक्टर हो. लेकिन मुझे इस ट्रेंड में टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नॉस्टैल्जिया मतलब जो इंटरेस्टिंग है वो लगता है. हम अचानक अपने आप को उस ज़माने में क्यों देखना चाहते हैं जिसमें शायद हम थे भी नहीं? शायद इसीलिए क्योंकि 80s ना सिर्फ एक टाइम नहीं था, एक दशक नहीं था, वो पूरा एस्थेटिक था. फोटोग्राफ्स में फिल्टर नहीं थे, हर मोमेंट रिकॉर्ड नहीं होता था. एक फोटोग्राफी के पीछे पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती थी, मतलब उनको चाहिए होता था कि एक बस फोटोग्राफर मिल जाए. और फैशन, बेल बॉटम्स, पोलका डॉट्स, बिग ग्लासेस, हाई वेस्ट जीन्स, ट्राउजर्स, ड्रामेटिक शर्ट्स, और वही चीज़ें वापस आती हैं और हम कहते हैं कि ओ माई गुडनेस, ये तो पूरा विंटेज लुक है. यानी फैशन वो कहीं नहीं जाता, हम उसे कुछ साल बाद फिर से कूल बोलने लगते हैं. अब जरा इमेजिन कीजिए, आपको एक दिन के लिए 1985 में भेज दिया जाए तो आप क्या पहनोगे? कौन सा बॉलीवुड गाना बैकग्राउंड में लगाओगे? और स्मार्टफोन के बिना पूरा दिन निकाल पाएंगे? व्हाट्सएप पर बताइए. 3311106 माय नंबर. शुरू हो चुका है लाइफ मस्त है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check.
2: Brought to you by
1: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
3: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ रेडियो ऑलिव बोलो बिंदास

फैशन की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। कुछ टाइम पहले एक फैशन का मतलब होता था न्यूट्रल कलर्स, बेज, वाइट, ग्रे, मिनिमल, मतलब ऐसे लग्जरी चाहिए लेकिन क्वाइट लग्जरी, मतलब क्लीन गर्ल, लेस इज मोर वाला फीलिंग आती थी। लेकिन अब फैशन फिर से बोल रहा है कि थोड़ा शोर मचाते हैं, बोल्ड कलर्स, स्टेटमेंट एक्सेसरीज, ड्रामेटिक पीसेस, यानी आउटफिट में पर्सनालिटी दिखाई देनी चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे ट्रेंड ना काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कपड़े ना सिर्फ ये नहीं बताते कि आपने क्या पहना है, कई बार वो ये भी बताते हैं कि आज आप कैसा फील कर रहे हो। सो जब आप

0: कलरफुल और बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो. सो एक दिन ब्लैक पहनने का मन होता है और दूसरे दिन अचानक पूरा कलरफुल आउटफिट. कभी ओवरसाइज शर्ट में दुनिया से थोड़ी सी दूरी चाहिए होती है तो कभी हील्स पहनकर आज प्रेजेंटेशन मैं ही दूंगी वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है. लेकिन फैशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेंड आते जाते रहते हैं. आज जो आउट है दो साल बाद वही मस्ट हैव होगा. इसीलिए शायद सबसे अच्छा फैशन रूल ये नहीं है कि क्या ट्रेंड में है, बल्कि आप उसको देखकर कैसा फील करते हो, आपके ऊपर वो कैसा लगता है, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि किसी दूसरे इंसान पर बहुत अच्छा लगने वाला आउटफिट जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी पर भी अच्छा लगे. तो आज वार्डरोब खोलिए और बताइए कि वो कौन सा कलर है जो ट्रेंड में हो या ना हो, आप उसे छोड़ नहीं सकते. ब्लैक, व्हाइट, रेड, पिंक या फिर कोई और, या ऐसा कलर जिसे देखते ही आप बोलते हैं कि ये भी पहन सकते हम. सुनकर बताइएगा, देखकर बताइएगा. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Awesome.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

फैशन की बात चली रही थी, निकली है बात, तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एवरीबॉडी सेइंग कि लड़कियों के लिए ना कुछ ऐसे नियॉन कलर, पिंक कलर, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कभी भी फैशन में हो या ना हो, उन्हें बहुत पसंद है। सो एक खूबसूरत बॉलीवुड फैशन कलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। करीना कपूर खान को डिज़ाइनर रितु कुमार की लेटेस्ट कुटोर कलेक्शन के लिए मतलब उसमें बुलाया गया था, लेकिन इस कलेक्शन की खूबसूरत बात सिर्फ फैशन नहीं थी, इसके पीछे फैमिली कनेक्शन और हेरिटेज की कहानी थी। रितु कुमार का काम ना सिर्फ नए कपड़े बनाना नहीं है, उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को मॉडर्न फैशन से जोड़ने का एक काम किया है। और करीना और मॉडर्न बॉलीवुड पर्सनालिटीज जब ऐसे हेरिटेज फैशन के साथ आती हैं तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्या फैशन सिर्फ नया पहनना है या कभी कभी पुरानी चीजों को नई जिंदगी देना भी फैशन है। हमारे घर में देखिए, आपकी मदर की कोई बहुत ही खूबसूरत पुरानी साड़ी या किसी का दुपट्टा या दादी की कोई ज्वेलरी या पापा की कोई पुरानी वॉच या टेक्निकली वो चीज़ें शायद एक्सपेंसिव भी नहीं होंगी, लेकिन उनकी इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, एकदम प्राइसलेस हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा पुराना हो सकता है लेकिन उससे जुड़ी कहानी पुरानी नहीं होती। और शायद यही वजह है कि फैशन में विंटेज और हेरिटेज बार बार लौट कर आते हैं। और इस पूरे शो में जो करीना कपूर खान और यू नो रितु कुमार का था, उसमें पूरा हेरिटेज ही दिखाया था, क्योंकि हम सिर्फ डिज़ाइन नहीं पहनते, हम कुछ यादें पहनना चाहते हैं। तो आज मुझे आपकी एक छोटी सी फैमिली फैशन स्टोरी बताइए, कोई एक साड़ी, कोई घड़ी, कोई अंगूठी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये तो मतलब संभाल कर रखना पड़ेगा। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस.

0: काफी देर से फैशन की बात कर रहे थे और सारे मैसेजेस जो है वो लड़कियों के आ रहे थे। अब थोड़ा किताब की तरफ चलते हैं। कल मैंने बहुत सारे अपने मैसेजेस पढ़े जिसमें किताबों के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हो। एवरीबडी वॉज आस्किंग कि इस किताब का नाम क्या है, ये कौन सी किताब है। आई वॉज लाइक ओ माई गुडनेस, मतलब लोगों को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अब थोड़ा किताब की तरफ चलते हैं। लेकिन आज कोई ऐसी किताब नहीं जो आपको बोले कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, सक्सेसफुल बनने के 17 रूल्स बताए, अपने जीवन को बदले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज एक ऐसी किताब की बात करते हैं जो ट्रैवल को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं। मानव कौल और वैभव शर्मा की अ माउंटेन, अ लेक एंड अ सॉन्ग, ये किताब है। ठीक है, ट्रैवल के बारे में हमें अक्सर सोचने पर मजबूर करती है कि कहाँ जाना है, कितने खर्च होंगे, पैसे, होटल कैसा होगा, कहाँ कहाँ घूमना है। लेकिन शायद ट्रैवल का सबसे बड़ा हिस्सा डेस्टिनेशन नहीं होता, आप उस जगह पर जाकर अपने बारे में क्या डिस्कवर करते हो वो होता है। कभी आप किसी क्राउडेड सिटी में जाकर समझते हो कि आपको एक्चुअली शांत जगह पसंद है। कभी पहली बार अकेले ट्रैवल करके पता चलता है कि अकेले रहना उतना स्कैरी भी नहीं होता जितना आपने सोचा था। कभी किसी अनजान इंसान से 10 मिनट की बातचीत जो है वो आपकी पूरी सोच बदल देती है। और कभी कभी ट्रिप से लौटकर सूटकेस में सोवेनियर कम और स्टोरीज ज्यादा होती हैं। सो जो ये ट्रैवलिंग है ये हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन अच्छी ट्रैवलिंग कई बार हमें खुद को दिखा देती है। सो आज ट्रैवल लवर्स से एक सवाल है कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी जर्नी है जिसने आपको डेस्टिनेशन से ज्यादा अपने बारे में कुछ सिखाया है। सिटी का नाम बताइए, कंट्री का नाम बताइए, और साथ में वो चीज भी जो आपने वहां जाकर खुद के बारे में डिस्कवर की है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, नंबर है 3311063। Stay tuned, Geo Bindas.
1: Radio Olive Park.
2: Fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Yeah.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office,

आजकल की लाइफ में ना एक चीज है जो बहुत मुश्किल हो गई है, कुछ देर बिल्कुल कुछ ना करना। हम बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो ईयरफोन्स हमारे पास हैं, सोने जा रहे हैं तो लास्ट 5 मिनट स्क्रॉलिंग तो होगी ही, और अगर 5 मिनट के लिए इंटरनेट चला जाए तो हमें लगता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन किताबें और स्लो लिविंग की दुनिया में एक आइडिया बार बार आता है, स्टिलनेस, यानी थोड़ी देर रुकना। हर खाली मिनट को भरना जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, कभी खिड़की के बाहर देखकर कुछ एक्टिविटीज करना, चाय पीते हुए सिर्फ चाय पीने की एक्टिविटी करना, किसी गाने को बिना इंस्टाग्राम खोले पूरा सुन लेना भी एक्टिविटी है, और शायद सबसे मुश्किल अपने थॉट्स के साथ कुछ देर अकेले रहना। क्योंकि साइलेंस में कभी कभी हमें वही बातें सुनाई देती हैं जिसने, मतलब हम दिन भर बिजी रहकर बचते रहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी को इतना सेलिब्रेट करते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन दिमाग भी मशीन नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए खाली जगह चाहिए। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अगर आपका फ़ोन 1 घंटे के लिए आपसे दूर रहे और मैं कहूँ कि अब कोई स्क्रीन नहीं, तो आप क्या करोगे? कोई किताब, कोई वॉक, कोई म्यूज़िक, कोई कुकिंग, या कोई पुराने मेल्स वगैरह पे काम करोगे? सो अब व्हाट्सएप पर बताइए, और 3311106 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट

एक बात तो है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत तेज हुआ है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन पेशेंस जीरो। पहले मैसेज भेजते थे और फिर इंतजार होता था, कोई सीन नहीं, ब्लू टिक नहीं और लास्ट सीन बिल्कुल नहीं।

0: बस मैसेज भेजा और अपनी जिंदगी जीते रहे। और आज यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM है, हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। मैसेज गया, सीन हुआ, रिप्लाई नहीं आया और दिमाग ने खुद ही वेब सीरीज बनाना शुरू कर दिया। बिजी होगा, नहीं तो ऑनलाइन तो था, शायद नाराज है, मैंने क्या कहा था, मतलब ऐसा तो कोई कॉन्वर्सेशन हुआ भी नहीं था, एक और मैसेज कर देती हूँ। और डिजिटल कम्युनिकेशन ने हमारी बहुत फास्ट बना दी है जिंदगी। एक रिसर्च में भी इंस्टेंट कम्युनिकेशन, कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जो हमारे कॉग्निटिव और इमोशनल एक्सपीरियंस है उस पर असर को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव ये है कि हमने वेटिंग को अनकंफर्टेबल बना दिया है। पहले इंतजार नॉर्मल था, अब रिप्लाई में 20 मिनट लग जाए तो लगता है कि कुछ तो हुआ है। और यही चीज रिलेशनशिप में भी आती है, हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं बिल्कुल अभी, आंसर चाहिए बिल्कुल अभी, क्लैरिटी भी चाहिए बिल्कुल अभी। लेकिन इंसान हर चीज का इंस्टेंट रिस्पॉन्स मशीन की तरह नहीं दे सकता। कभी सामने वाला जेन्युइनली बिजी है, कभी उसे सोचने का टाइम चाहिए, कभी उसके पास जवाब नहीं होता। और शायद हमें ना फिर से एक स्किल सीखनी चाहिए, हम साइलेंस को पर्सनल ना लें और मतलब पेशेंस की तरह बात करें। मतलब 10 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटे मैसेज भेजने के बाद उस मैसेज को भूल जाइए और फिर वो फेमस हेलो विद क्वेश्चन मार्क और यू नो फिर से आप मैसेज कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल से कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज करके छोड़ दीजिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ माय हूं मुस्कान 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

So, एक बच्चा ना अपना होमवर्क लेकर बैठा हुआ है. क्वेश्चन बहुत मुश्किल है. पहले वो क्या करता, मम्मी से पूछता, फिर पापा से पूछता, फिर दोस्तों को फोन करता, और अब तो भाई AI खोलो, क्वेश्चन डालो, आंसर सामने, काम खत्म. कन्वीनियंट बहुत ज्यादा. लेकिन यहीं से एक इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो शुरू होता है. अगर टेक्नोलॉजी हर सवाल का आंसर बहुत जल्दी दे दे तो क्या बच्चा सोचना कम कर देगा? इसका जवाब अभी सिंपल हाँ या नहीं में नहीं है. रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट अभी AI के बच्चों और टीनेजर्स की कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर इफेक्ट को समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. लेकिन AI एक कैलकुलेटर जैसे टूल भी हो सकता है और एक क्रच भी. मतलब कोई फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं. अगर बच्चा कहता है कि मुझे आंसर बता दो तो एक तरीका है, लेकिन अगर बच्चा पूछता है कि मुझे समझाओ कि आंसर तक पहुंचना कैसे, तो लर्निंग बिल्कुल अलग हो जाती है. और ऑनेस्टली ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, इवन हम एडल्ट्स भी तो यही कर रहे हैं. ईमेल लिखना है AI, ट्रिप प्लान करना है AI, डिनर में क्या बनाना है AI. कभी कभी तो लगता है कि अगला सवाल होगा कि AI मुझे ना किस बात पर नाराज होना चाहिए. टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत है, लेकिन अपनी थिंकिंग आउटसोर्स करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. तो पेरेंट्स और बाकी लिसनर्स, मतलब मैं सबसे यही कहूंगी कि आप बताइए कि AI आपके लिए असिस्टेंट है या धीरे धीरे सेकंड ब्रेन बनता जा रहा है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

सो ये वाला सवाल पूछने के बाद आई नो व्हाट्सएप सेक्शन में बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। अब भाई 80s में हर कोई जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि 80s, 19 या फिर 2000s या आज का बॉलीवुड सबसे ज्यादा स्टाइलिश एरा कौन सा था। 80s में वो सिलोट्स, ठीक है, जहां पर ड्रामेटिक हेयर, कलरफुल आउटफिट्स आपने देखी लिए। 90s में डेनिम, शिफॉन, लेदर जैकेट्स, बिग शर्ट्स और एफर्टलेस वो बॉलीवुड रोमांस। फिर आता है 2000 का टाइम, जब लो राइज जीन्स जो है वो फैशन में आ जाती है, शाइनी बेल्ट, कलरफुल सनग्लासेस, और आज मिनिमलिज्म, लग्जरी, स्ट्रीट स्टाइल, ये सब कुछ है लेकिन बहुत ही कलर को कंट्रोल करके। और इंस्टाग्राम ने हर इंसान को अपना स्टाइलिस्ट बना दिया है। लेकिन मजेदार बात ये है कि जो फैशन कभी हमने आउटडेटेड लगता था, कुछ साल के बाद वही वापस आ जाता है। वो पुरानी मम्मी की साड़ी जो बहुत ही विंटेज लगा करती थी, वो कांजीवरम, वो सिल्क, अब वो सब हमें अच्छी लगती है। पापा की वो ओल्ड जैकेट हमें लगता था कि यार ये कब खराब होगी, बट अब वो हमें रेट्रो लगती है। पुराने सनग्लासेस वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सो मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो चीज़ें पहनकर रख दी थी, अब हमें वही पिंटरेस्ट पर सर्च करके खरीदने को मन करता है। और शायद फैशन का यही मजा है, हम ट्रेंड को भूलते हैं, फिर नॉस्टैल्जिया हमें वापस ले आता है। सो आज बॉलीवुड फैशन कोर्ट में आप बताइए, फैसला लीजिए कि आपके हिसाब से सबसे स्टाइलिश एरा कौन सा था, 80s, 90s या 2000s या फिर आज का टाइम। और एक और बात, एक सेलिब्रिटी का नाम भी बताइए जिसने उस एरा का फैशन सबसे अच्छे से कैरी किया। बाय द वे इसमें तो फिर बहुत ही बढ़िया बढ़िया नाम है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, 3311063 इज माय नंबर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास रेडियो।

So, अभी थोड़ी देर पहले मैं YouTube पर एक वीडियो देख रही थी और फिर वैसे ही 10 और वीडियोस सामने आ जाती हैं। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने भी नोटिस की होगी, आपने कोई गाना सुना, सेम टाइप का गाने की प्लेलिस्ट रेडी हो जाती है, एक ड्रेस सर्च की और Instagram पर दूसरी लड़की वही ड्रेस पहनकर आपको दिख जाती है। फिर हम बोलते हैं कि यार मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन एक सेकेंड, पसंद आपकी है या एल्गोरिदम ने आपको इतनी बार दिखाई है कि आपको पसंद आने लगी है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे बिहेवियर से लर्न करते हैं, हम किस चीज़ पर रुकते हैं, किस से स्किप करते हैं, क्या लाइक कर रहे हैं और किस वीडियो को दोबारा देखते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम येस ऑफकोर्स लाइफ मस्ट है। फिर वही चीज़ें ना हमारी फीड में और आने लगती हैं और धीरे धीरे हमारा डिजिटल वर्ल्ड बहुत छोटा हो जाता है, आपको लगता है पूरी दुनिया यही देख रही है, जबकि असल में आपकी दुनिया का छोटा सा हिस्सा बार बार आपको दिखाई दिया जाता है। और ये सब एंटरटेनमेंट में नहीं होता, न्यूज़ में आपको उसी तरह के ओपिनियंस मिलेंगे, फैशन में आपको वही तरह की चीज़ें दिखेंगी, म्यूज़िक भी आपके टेस्ट का आ जाएगा और कभी कभी तो डेटिंग ऐप्स पर भी वही पर्सनालिटी टाइप्स जो हैं वो दिख जाते हैं। सो एल्गोरिथम बोल रहा है कि मैं तुम्हें तुमसे बेटर जानता हूँ। अब सवाल ये है कि क्या ये सुविधा है या हमें कभी कभी जानबूझकर अपने एल्गोरिथम से बाहर निकलना चाहिए? आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने यूजुअल प्लेलिस्ट से हटकर कोई ऐसा गाना सुनिए जो नॉर्मली आप कभी नहीं सुनते, कोई ऐसी मूवी देखिए जो आपने यूजुअल कभी देखने के मन भी नहीं किया आपका, या किसी ऐसे क्रिएटर को देखिए जिससे आप नॉर्मली एग्री नहीं करते, हो सकता है कि आपको कुछ बिल्कुल नया पसंद आ जाए।

0: व्हाट्सएप करके बताइए कि आप ऐसी कौन सी चीज़ पसंद करते हैं जो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने आपके अंदर डेवलप की है, फैशन, म्यूजिक, फूड या फिर मूवीज। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

सो आज रात को ना दुनिया के करोड़ों लोगों की नजर एक ही जगह पर होगी, विच विल बी एप्पल पार्क, क्योंकि एप्पल का नया इवेंट है सरप्राइज एंड शाइन। अब आईफोन का लॉन्च होना तो अपने आप में कोई बड़ी बात है नहीं। इस साल नया आईफोन आया और नए कैमरास, नए चिप्स, नए कलर्स, थोड़ी बड़ी बैटरी और फिर हम सबका एक ही सवाल कि पिछले वाले से कितना अलग है ये। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एप्पल के नए सीईओ आ गए हैं, उन्होंने अपना पहला बड़ा पब्लिक इवेंट अटेंड करना है और सबसे बड़ा बज है कि क्या एप्पल आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल आईफोन दिखाएगा। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम लाइनअप में आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और उसी के साथ फोल्डेबल मॉडल भी आ सकता है, जिसे फिलहाल आईफोन अल्ट्रा कहा जा रहा है। लेकिन एप्पल ने अभी डिटेल्स को ऑफिशियली कंफर्म तो किया नहीं है, और अगर फोल्डेबल आईफोन सच में आता है तो ये सिर्फ एक नया फोन नहीं होगा, क्योंकि एप्पल जिस कैटेगरी में आता है वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलती, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं। अब इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दूसरे जो हमें बहुत पसंद है, जैसे कि सैमसंग, मोटोरोला और काफी सारे फोल्डेबल फोन बना रहे हैं, लेकिन एप्पल का इंतजार हम सब कर रहे हैं। मतलब एप्पल का एटीट्यूड शायद ये है कि जब आएंगे थोड़ा देर से आएंगे लेकिन रेडी होकर आएंगे। सो यू टेल मी कि आप भी क्या उसी का वेट कर रहे हैं? बाय द वे, हमारा करंट फोन ठीक चल रहा है, कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है, एप्स बढ़िया चल रही है, फिर भी नया मॉडल देखते ही लगता है कि यार बस अब अपग्रेड करना तो बनता है। सो यू टेल मी कि वो नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू का आइडिया बेचता है या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ठीक है हम पुराना फोन चला लेंगे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप

सो दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि मुझे जाना होता है, लेकिन जाते जाते आपके लिए सुपर हिट गाने एक तो लाइन अप करके जाती हूँ. अब जाते जाते थोड़ा सा फन टॉपिक पे बात करते हैं. भाई जजमेंट पे तो मैं बात करती रहती हूँ कि यूजुअली हम नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से जज कर ही लेते हैं, पर कभी किसी इंसान को पहली बार देखा है और उसके कपड़े देख कर ही आपको उसके बारे में एक छोटी सी राय बनाने का मन किया है? बहुत कलरफुल क्लोथ्स हैं, ये तो बहुत आउटगोइंग होगा, या फिर किसी ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हैं तो आपको थोड़ा मिस्टीरियस लगा हो, सिंपल व्हाइट शर्ट में आपको कोई बहुत सॉर्टेड लगा हो, या फिर वो बोलते हैं ना मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. हम क्लोथ से ही इंप्रेशन बना लेते हैं, लेकिन फैशन ना सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं होता, कभी आउटफिट हमारे मूड को बदलता है. कभी आपने नोटिस किया है कि घर में नॉर्मल क्लोथ्स में पूरा दिन निकाल रहे होते हैं, फिर तैयार हुए, बाल बनाए, परफ्यूम लगाया, वॉच पहनी, शूज अच्छे से निकाले और अचानक मिरर में देखकर लगता है ओके आज कुछ भी हो सकता है. कोई कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करते आप. सो कपड़े जो है वो एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन कई बार वो कॉन्फिडेंस को एक्टिव जरूर कर देते हैं. सो इसी वजह से मुझे फैशन का सबसे अच्छा वर्जन वो लगता है जिसमें आप ट्रेंड फॉलो करने से पहले खुद को पहचानते हो. मतलब अगर हो सकता है आपको ट्रेंड में लग रहा हो कि यार हील्स बहुत इन है, लेकिन आप स्नीकर्स पहनना पसंद करते हो क्योंकि वो आपके लिए कंफर्टेबल है. सो आपके आउटफिट की वो वन चीज, मतलब वन थिंग क्या है जो आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा बताती है? आपके शूज, वॉचेस, इयररिंग्स, बैग, परफ्यूम, कलर, बताइए मुझे. सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, नंबर इज 3311063. अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल मिलेंगे वीकेंड की वाइब के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. Radio

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: From vacation in your hometown, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: किराए के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: हाय देयर फ्रेंड्स दिस इज डीजे सुकेत You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm a number one.
4: Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: Nesto, all that you need.
0: Olive Music Marathon, 1 ghanta, 1 ghanta. Non-stop back to

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। मॉर्निंग से नाइट।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: से पांच विद आरजे सुबेर रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और बांध रखी है तो और कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहां पे हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा सिलसिला जहां पे एक साथ बैठकर गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज, और कहते हैं जियो बिंदास।

0: चाहिए, क्योंकि आर्ट क्रिएट करने के लिए या फिर लाइफ को एक बहुत ही अच्छा मीनिंग देने के लिए ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस बहुत काम आते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Awesome.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। कई दफा ऐसा होता है जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत रेजिस्टेंस फील होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फील होता है, मेंटल रेजिस्टेंस फील होता है। हमें लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, फेल हो गया तो क्या होगा, मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि उस एक नैरेटिव को स्विच करके सोच के देखिए, अगर ये हो गया तो क्या होगा, मैं कर सकता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू रीराइट द स्टोरी दैट इज गोइंग इनसाइड योर हेड। जो हमारे दिमाग के अंदर जो कहानी चलती रहती है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा तो ये क्या होगा, वो क्या होगा, उस कहानी को चेंज करिए, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, मुझसे नहीं तो किससे होगा। तो ये एक जुनून रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने आप को हर दिन ये याद दिलाना भी है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और मैं एक चीज ऐसे सोच रहा था, ठीक है, जैसे कि फोन में ऐसे ही मैं देख रहा था चीजें, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस देख रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे पास iOS यूजर्स के पास जो है लिमिट का ऑप्शन है। हम एक ऐप को एक दिन में कितने घंटे तक यूज करना है उसका एक लिमिट रखने का ऑप्शन है, जो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि होना चाहिए, इसे यूज करना चाहिए करके। बट सिमिलरली मुझे ये भी लगता है कि यार सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं उनको भी अपने साइड से एक एथिकल स्टेप लेना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि अगर आपने एक दिन में एक घंटे तक ये ऐप यूज किया है तो बस नाउ गो बैक टू योर रियल लाइफ करके। देखिए, ये ऑब्वियसली होने नहीं वाला क्योंकि वो लोग भी अपने ही प्रॉफिट के लिए वहां पे कंपनी खोल के बैठे हैं, ठीक है। तो बात तो काफी क्या कहते हैं यूटोपियन थॉट वाली है, मगर ऐसा हो जाए तो सही रहेगा। मुझे लगता है इससे अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो लोग और अच्छे से या फिर और जुडिशियसली जो है अपने सोशल मीडिया टाइम को यूज करेंगे, क्योंकि दिन में एक घंटा ही मिलता है तो प्रॉपर तरीके की चीजें देखेंगे, वक्त जाया नहीं करेंगे, जो चीज हमें चाहिए उसी की ओर जाएंगे। मेरा ये मानना है, आपको क्या लगता है बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Ye gana say what?

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहां है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हां मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: नमस्कार मैं हूं आर माधवन
3: हाय दिस इज विपाशा बासु
4: हाय आई एम राजकुमार राव
5: हाय मैं हूं प्रियंका चोपड़ा
6: हाय दिस इज दिशा पार्डी
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 एफएम

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बात करना चाहूंगा एक एक्टर के बारे में जिसने अपने लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज फेस की है। उन्होंने बहुत ही छोटे उम्र में अपने पेरेंट्स को जो है खो दिया था। उसके बाद लाइफ में जब वो थोड़ा आगे बढ़े, एक रिलेशनशिप में आए, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप था और उसमें एक बेटी थी उनकी, उसको बहुत जल्दी वो खो गए। उसके बाद अपने पार्टनर को खो दिए। लाइफ में ट्रेजेडीज वन आफ्टर द अदर आते रहे, मगर उस इंसान ने कभी भी जिंदगी को जीना नहीं छोड़ा। हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हैं, जिसको जरूरत हो उसकी हेल्प करते हैं। और इतने सिंपल एक सेलिब्रिटी, मुझे लगता है कि शायद उनकी सिंप्लिसिटी से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कियानू रीव्स की। उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि उनके लाइफ में इतने डिजास्टर्स हो रखे हैं, इतने सारे डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हो रखी हैं कि एक इंसान अपने ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करता है, ये हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। मगर उनकी ज़िंदगी जो है एक टेस्टमेंट है कि लाइफ में हमें निराश कर देने वाली चीज़ें आती रहेंगी, मगर वो सोच के दुखी बैठना है या नहीं रहना है, ये हमारा चॉइस है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। आपके ऑफिस में एक दिन अगर हम आए, चिल करें, मस्ती करें, गेम्स खेलें, फन करें और बहुत बढ़िया तरीके से आपको एंटरटेन करें तो कैसा लगेगा। और इस एक दिन हम सिर्फ आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, रिचार्ज करेंगे, रीएनर्जाइज करेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीनेस लाउंज के बारे में, जहाँ पे रेडियो ऑलिव की टीम जो है आपके ऑफिस में विजिट करेगी, बहुत बढ़िया फन करेगी, एक बहुत ही मेमोरेबल डे जो है स्पेंड करेगी। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है HL space आपके कंपनी का नाम 3311063 पर, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा स्किल जो मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए, वो है कॉम्प्लीमेंट्स को हैंडल करना। जी हाँ, इंसल्ट को हम फिर भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि या तो हमें कुछ ना कुछ ह्यूमरस बोल के इसमें से निकलना है या फिर एक जवाब वापस देना है। मगर जब कोई जेन्युइनली हमें कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो हम थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, मेरी सिलेक्शन हो गई ये करके। तो कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करना आना इज एन आर्ट, और मुझे नहीं आता सच बताऊं तो। जब लोग कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं मेरे बारे में, तो मैं बहुत ही ऐसे शर्मिंदा सा हो जाता हूँ, वो शिनचैन जैसा हो जाता है मेरा, ए मैं इतना भी कुछ खास नहीं करके। बट दैट्स नॉट द वे टू एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को हैंडल करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कला है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट को बहुत बढ़िया से हैंडल कर सकते हैं तो प्लीज मुझे सीख दीजिए, सीखना चाहेंगे हम। 3311106 पर मुझे मैसेज कीजिए और बताइए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन नमस्कार मैं हूँ आर माधवन आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे आपके साथ एक शेयर जो है हम शेयर करना चाहेंगे। और ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने तभी सोच लिया था कि ये अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना है, तो शुरू करते हैं। अर्ज किया है। चलिए। मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, तू है मौजूद इस कदर मुझ में। ये उन लोगों के लिए है जो बेशुमार मोहब्बत करते हैं, जो अपने बारे में भूल जाते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनके मन में, उनके ख्वाबों में, उनके ख्यालों में सिर्फ वही वो घूमते रहते हैं। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जियो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ओलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, कंटेंट चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें सुनते हुए आप स्टोरी डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के भी मौके हैं। तो हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबेरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, 5 ही अभी बाकी है, जबरदस्त इवनिंग शुरू होने वाला है। तो मैं जरा निकलता हूँ, मगर जाने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-561-23.

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: देखिए पार्टी तो अभी बाकी है, क्योंकि पार्टी अभी अभी तो शुरू की है एंड अभी जो है बहुत लंबे रास्ते हमें जाना है, क्योंकि जबरदस्त इवनिंग की शुरुआत अभी अभी की है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाई हुई है। आज बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आपको, जो है हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी मूवीज हैं जो आपको एक बार ज़रूर से देखनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है कतर में, या कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं तो वो भी आपको पता चलेंगी। लेकिन लेकिन लेकिन जैसे जैसे शाम जो है वो गहरी होती जाएगी वैसे वैसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है एकदम अमेजिंग सेट ऑफ सॉन्ग्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय करते जाओ और बस कहते जाओ जियो बिंदास। फिलहाल संजू राठौड़ की आवाज में लाल लाल कलर ची बांगड़ी बांगड़ी च कलर ला। चलिए जी, आज जो है आप लोगों से हाय हेलो गुड इवनिंग नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि बांगड़ी का मतलब क्या होता है। मुझे तो पता है, मैं भी थोड़ी सी देर में आपको बताई दूंगी, लेकिन मुझे बताओ किस किस को बताया कि ये जो गाने में बांगड़ी बोला है ये बांगड़ी का मतलब क्या है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ओके, और हम लड़कियों की फेवरेट चीज़ है। सो बांगड़ी का मतलब बताओ मुझे कॉल करिए 3311063 पर। एक्चुअली कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। सो जल्दी से व्हाट्सएप करो, बताओ मुझे, बाकी अमेजिंग वाली बातचीत जो है वो हम जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jiya
1: Bindas. Time check.
2: Brought to you by
1: Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
3: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:09. दैट इज 5:09. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
4: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा.
5: Hi, मैं हूँ सोहाली खान and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
6: I'm the number one, Radio Olive.
0: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ Radio Olive पर. Jio Bindas.
8: Zabardast evening. Make your drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.
11: Just

बाय एनी चांस सोनू निगम जी, क्या आप हमारे यहाँ के आसमान की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो भी इस वक्त इतने ही कलर्स का दिख रहा है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, मैंने जो है आपसे ये पूछा था कि यार ये बांगड़ी जो अभी गाना मैंने आपको सुनाया था, उसमें बांगड़ी का मतलब क्या होता है? ये लाल लाल कलर ची बांगड़ी। सो बांगड़ी का मतलब होता है बैंगल, बैंगल। सो लाल कलर के बैंगल की बात हो रही है इस बैंगल सॉन्ग में। वैसे ये वाला तो नया गाना है, लेकिन चुटकी

0: मेरी, क्योंकि इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में बाहर का मैं कुछ देख नहीं पाती ना. तो आपका कैमरा उठाइए एंड मेरी जो है आंखें बनिए एंड आपकी नज़र से शायद मैं बाहर का आसमां देख सकूं. सो 40 डिग्री सेल्सियस इस वक्त दोपहर का टेम्परेचर हो रहा है. आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस था, यानी पिछले कुछ दिनों में आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है. एंड 33 डिग्री सेल्सियस आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है. सो देखिए इस मतलब टेम्परेचर का तो अब मैं गारंटी नहीं दे सकती, बिकॉज बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर बदल रहा है जैसे ना हर एग्ज़ाम में, हर टर्म में, हर सेमेस्टर में मेरे मार्क्स बदलते थे. किसी सेमेस्टर में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और किसी में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी. सो बस उसी की तरह ये जो परफॉर्मेंस है, ये मौसम का भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, उस पर भी बात करते रहेंगे. लेकिन उससे पहले आप जो है काम कीजिए, अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आप सिग्नल पर खड़े हैं या आप चल रहे हैं या पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो एक आसमान की प्यारी सी फोटो मुझे जो है भेज दीजिए जल्दी से 3311063 पर. फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इसे इंजॉय कीजिए. लो चाय उल्फत टू स्टेट मूवी से एंड बस बाकी फिर थोड़ी देर में बातचीत जो है वो जारी रखते हैं आपकी कशिश के साथ. कहते रहिए जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग मेरे भाई सिर्फ रेडियो ओलिव पर जबरदस्त इवनिंग जियो बिंदास
3: Zabardast Evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

क्रिस का गाना सुनेगा क्रिस का. वैसे देखिए इस गाने में बिल्कुल सही बात पूछी गई है, ये दिल ना लिया दिल ना दिया तो पूछो क्या किया, सिर्फ स्ट्रेस दिया, सिर्फ परेशान किया और कुछ नहीं किया. और नहीं तो क्या, मतलब अभी वेंसडे के दिन ना काम का मन हो रहा है ना छुट्टी मिल पा रही है, तो सिर्फ ऐसे ही लगता है कि यार जल्दी से वक्त जो है वो बीते एंड वीकेंड आए. एटलीस्ट थर्सडे को जो है ये होप तो रहती है कि बस आज काम करना है और फिर कल से तो यू नो वीकेंड. फिलहाल देखिए आप लोगों से मैंने ये बोला था कि यार मुझे ज़रा अपनी नज़रों से जो है बाहर का नज़ारा दिखा दीजिए, तो लोगों ने जो नज़ारा उन्हें दिख रहा है उन्होंने वो भेज दिया. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. एंड आपसे बस एक छोटी सी इल्तिजा की थी मैंने कि आपको जो भी नज़र आ रहा है, चाहे वो सुर्ख आसमान हो, खूबसूरत कोई व्यू हो, तो वो मुझे भेज दो. लोग मुझे समोसा चाट की फ़ोटो भेज रहे हैं, क्या बात है यार, क्यों? वैसे अच्छा लगा मुझे ये देख के, है ना, क्योंकि अब मतलब इस टाइम पे जो है मतलब भूख लग जाती है थोड़ी थोड़ी करके, सो मुझे जो है बहुत ही अच्छी समोसा चाट की फ़ोटो आ चुकी है, थैंक यू सो मच. लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आसमान की फ़ोटो आई है या नहीं आई है. हाँ जी आई है एंड बहुत खूबसूरत आई है. एंड संजय जी ने जो है कुवैत से फ़ोटो हमें भेजी है, तो थैंक यू सो मच संजय जी. एंड आप कुवैत में हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा. जैन अली जी ने भी एक बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटो जो है वो हमें भेजी है. एंड जैन जी जो है काफ़ी कंसिस्टेंट है, ये हमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जो है वो ऑलरेडी भेजते रहते हैं. उन्होंने राइट नाउ फीलिंग जो है वो वाली फ़ोटो भी भेजी है. ऐश ने जो है हमें भेजी थी चाट की फ़ोटो, सो थैंक यू सो मच ऐश मुझे जो है थोड़ा भूख वाला फीलिंग देने के लिए, क्योंकि अब मुझे स्टूडियो में बैठते नहीं बनेगा, अब मुझे बाहर जाके कुछ ना कुछ खाने का मन हो गया है. सो थैंक यू सो मच आप सबके अमेजिंग फ़ोटोज़ के लिए. बाकी एक अमेजिंग वाला गाना मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: In school season, har din ko fuel kare delicious or nutritious Maserati fresh products ke saath.
2: Milk, cheese, yogurt, lemonade, eggs!
3: Breakfast se lekar lunch box aur snacks tak. Maserati hai aapki puri family ke liye perfect choice.
4: Grow with Maserati, freshly from Qatar.
5: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
3: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
2: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
3: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
2: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

तो दी ओजी गोलमाल से टाइटल ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, गोलमाल तो आजकल हर जगह हो रहा है। एंड क्या आपको ये वाली बात पता है कि आप जो है अपनी डेस्क पर बैठकर ऑफिस में अपना माउस जो है उसे कितना यूज कर रहे हो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है मेजर किया जाता है। हाँ जी, आपके सिस्टम पे मतलब बेसिकली जो लोग ज्यादा कोडिंग का काम करते हैं या ज्यादा कंप्यूटर डेस्क जॉब है ना उनकी, उनका काम मेजर करने के लिए और वो ज्यादातर अपने डेस्क पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसे मेजर करने के लिए उनके माउस के मूवमेंट को जो है वो ट्रैक किया जाता है कि कितनी बार अपने माउस से क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं या माउस को यूज़ कर रहे हैं। एंड क्योंकि इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से अब ऑनलाइन साइट्स में जो है ऐसे डिवाइस आने लग गए जो टाइम टाइम पे आपके माउस को स्क्रॉल करते रहते हैं एंड उन्हें क्लिक करते रहते हैं एंड जो है ऐसा लगता है कि आपका माउस जो है वो मूवमेंट कर रहा है बेसिकली। एंड सो इतने आलसी लोग हो गए थे कि उन्होंने जो है ऑनलाइन ऐसी चीज़ें ऑर्डर करनी शुरू कर दी। लेकिन अब आज ही सुबह जो है मुझे कोई बता रहा था कि अब चैट जीपीटी जो है उसकी वजह से आपको अपने माउस को तक हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप चैट जीपीटी को जो है सिर्फ कमांड देंगे कि चैट जीपीटी ये वाला टैब ओपन कर दो, ये वाला टैब लेफ्ट में कर दो, राइट में कर दो, एंड चैट जीपीटी आपके लिए ये सब करेगा। वाओ, मतलब मुझे मेरे हाथ भी यूज नहीं करने हैं, मतलब मैं अपने हाथों से चिप्स खाते खाते जो है अपने कंप्यूटर पे सारा काम कर सकती हूँ। वाओ, फिर तो मेरे बॉस को, मेरे मैनेजर को जो है मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो खुद ही जितनी देर में वो मुझे कमांड देते हैं या जितनी देर में मैं अपने इंटर्न को कमांड देती हूँ कि यार ये वाला काम प्लीज़ मेरे लिए कर दो, उतनी देर में ये काम तो मैं ही कर दूँगी। वैसे मेरी लाइफ आज तक ऐसी ही चल रही थी, मैं चैट जीपीटी को कैसे कमांड दूँगी मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बिकॉज जब मेरे अंडर में कोई इंसान काम कर रहा होता है मेरी टीम का एंड मुझे उन्हें इंस्ट्रक्शन देने होते हैं या उन्हें सिखाना होता है, तो मैं आधा काम उनको देती ही नहीं, ये सोच के कि जब तक इनको समझाऊंगी उतनी देर में तो मैं ही कर दूंगी। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी, जितनी देर में मैं चैट जीपीटी को बोलूंगी चैट जीपीटी मूव द टैब टू द लेफ्ट, इतनी देर में तो मैं एक क्लिक में खुद ही मूव कर दूंगी। तो कई बार चीजें जो है वो ज्यादा यू नो टेक फ्रेंडली बनकर हमें आलसी बना देती हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। सो मेरा तो बेसिकली सुझाव यही है कि इतने से क्लिक क्लिक वाले काम के लिए चैट जीपीटी को ना यूज करें तो ही बढ़िया होगा। खैर, वैसे जब ये जो चीज़ है ये नॉर्मली यूज़ करनी शुरू की जाएगी तो देखना सबसे पहली इंसान मैं ही होंगी जो इसे यूज़ करूँ। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना टॉक्सिक मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इस गाने को एंजॉय कीजिए। गाने का नाम है मदहोश। सो एंजॉय करके ज़रा लौट के आइए, उसके बाद बातचीत जो है जारी रखेंगे। चुटकी भर सॉन्ग में आज का गाना कौन सा है वो आपको गेस करना होगा। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कोशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:14, दैट इज 6:14। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने? तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
3: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
2: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
3: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
0: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
5: ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ, ਟੂ ਪਲੇ, ਟੂ ਗਰੋ ਵਿਦ ਮਾਸਰਤੀ।
6: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
5: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स,
6: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: बताइए मुझे जरा कि कौन है वो शाहरुख खान फैन जिसने इस गाने पर एक भी बार शाहरुख को इमेजिन करते हुए डांस नहीं किया। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। यार आई किड यू नॉट, लेकिन आप शाहरुख खान के जरा स्टारडम को एक बार री इमेजिन कीजिए और ये देखिए कि एक सुपरस्टार को बड़ा सुपरस्टार होने के लिए, मतलब प्रूव करने के लिए और क्या चाहिए, मतलब उनको अपने स्टारडम के लिए, अपने यू नो फैंस जो है उनके लिए एक फैन एंथम जो है वो चाहिए था, इसीलिए उन्होंने जबरा फैन जो है ये लॉन्च किया। एंड इस मूवी की अगर आप स्टोरी देखेंगे तो ये कोई अलग नहीं है, ये हर रोज आप मन्नत के सामने के जो व्यू है वो देख सकते हैं। एंड मुझे तो यार देखो एक बार बस मुंबई जो है वो इसीलिए जाना था क्योंकि मन्नत के सामने फोटो खिंचानी है, वो जो मन्नत का एक नेम प्लेट है ना उसके साथ फोटो खिंचानी है। एंड मैं इंस्टाग्राम पे वो जो भैया है ना, वो जो मन्नत के अंदर से जो रिनोवेशन चल रहा है और उसकी फोटोज इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, उनसे काफ़ी जेलस फील कर रही थी कि यार इससे अच्छा तो मैं इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स ही कर लेती तो कम से कम मुझे शाहरुख के घर के अंदर जाने का मौका तो मिलता। वैसे देखिए इंस्टाग्राम से एक और बात मुझे याद आई है कि इंस्टाग्राम ने ना एडिट्स पर, यानी इंस्टाग्राम का जो एडिट्स ऐप है, अब आप उसके अंदर जाकर जो है अपने आप कराउजल्स बना सकते हो, यानी आपको किसी और ऐप को डाउनलोड करके उसमें एडिट करके फिर उसको जो है एक्सपोर्ट करके फिर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो कराउजल्स आपको जैसे भी एडिट करने हैं, चाहे आपको कोलाज ऐड करना है या आपको वो बटर येलो वाला जो वायरल टेक्स्ट है वो ऐड करना है, अब आप अपने एडिट ऐप में जाकर थोड़ी सी सेटिंग्स में चेंज कर आप इन्हें एडिट कर सकते हो। So, जल्दी से अपने एडिट ऐप पे जाओ एंड उसके बाद कराउजल्स में जाकर आप बहुत ही एस्थेटिक कराउजल्स जो है वो पोस्ट कर सकते हो। एंड अगर मैं कतर के क्रिएटर्स की बात करूँ ना, सो कुछ बहुत माइक्रो क्रिएटर्स हैं, यानी बहुत छोटे क्रिएटर्स हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो पोस्ट बहुत एस्थेटिकली करते हैं एंड वो जो है इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका यहाँ के हैं। एंड सच में इतनी एस्थेटिक पोस्ट देख कर ना मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बार इनसे मैसेज करके मैं ज़रूर पूछूंगी कि एडिट कहाँ कर रहे हो आप। फिलहाल इस कूल सी अपडेट के बाद मुझे ऐसा लगता है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर एंजॉय करना चाहिए एंड थोड़ी सी देर में मैं आपको जो है सुनाने वाली हूँ आज का चुटकी भर सॉन्ग। हाँ चुटकी भर सॉन्ग थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं जो है ये सोच रही थी कि सलमान भाई का गाना आज नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी सलमान भाई का गाना अपने आप आ गया। सो थोड़ी सी देर में चुटकी भर सॉन्ग में सलमान भाई का एक गाना जो है आपको मैं सुनाने वाली हूँ और आपको गेस करके मुझे मूवी और गाने का नाम बताना है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर जरा इंतजार करो एंड फिलहाल एक कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आर आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है। क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग मेरे भाई सिर्फ रेडियो ओलिव पर जबरदस्त इवनिंग जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग Zabardast Evening. Make you drive golden with. Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

मेरा मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आप जब भी कोई नई कंट्री या कोई नया शहर जाते हो ना, तो आप अपने मन में जो है सोच के रखते हो कि यार वहाँ पे ना एस्थेटिक लोकेशंस होंगी। सो इस वाले जो गाना है ना, इस वाले गाने पे मैं रील्स बनाऊंगी। एंड मैंने सच में ये वाला गाना और एक दो और गाने जो है सेव करके रखे थे, तो कितनी अच्छी एस्थेटिक चलते हुए एकदम स्वैग वाली जो है वीडियोज लूंगी और इस गाने पर जो है रील बनाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं बन पाया, 7 महीने हो गए मुझे यहाँ पर, कुछ भी नहीं बना, बल्कि एक अच्छी फोटो नहीं आ पाई है मेरी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, आपसे वादा किया था कि यार आपको मैं चुटकी भर सॉन्ग जो है वो सुनाऊंगी, एंड आपको मुझे बताना होगा कि ये गाना जो है ये कौन सी मूवी का है और इस गाने का नाम क्या है। तो बिना किसी देरी के जरा कान और ध्यान लगाकर ये गाना आप सुनिए और मुझे बताइए कि जरा ये गाना आपने कौन सी मूवी में सुना है एंड इस गाने का नाम क्या है।

ये जो नटखट से कॉन्वर्सेशन हुई है मूवी में, मजा ही आ गया है। बताइए 3311063 पर कि ये जो ब्राइड कोडेड गाना है, ब्राइड कोडेड नहीं, शादी कोडेड गाना है, ये कौन सी मूवी का है एंड गाने का नाम क्या है। 3311063 इज द नंबर। एक और बार सुना दूं? चलो एक और बार सुना देती हूँ, जरा ध्यान लगाकर सुनो और बताओ मुझे ये गाना कौन सी मूवी का है।

अगर आपने जो है बॉलीवुड वाली वेडिंग जो है वो इमेजिन करी है तो इस मूवी के गाने जरूर होंगे, एक ना एक गाना तो जरूरी होता है। मैं हूँ आपकी कशिश, 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे ऑडियो नोट भेज दो या तो टेक्स्ट कर दो, बता दो मुझे कि ये जो गाना मैंने आपको सुनाया ये कौन सी मूवी का है और इस गाने का नाम क्या है। 3311063। फिलहाल अब शादी की बात करी है तो मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी से धुन की गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो सीओ बिंदास।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

देखिए राता लंबिया का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये वीक काफी लंबिया लंबिया सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब से चल रहा है, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसूर संजो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखा है। आप देखिए थोड़ी देर पहले बात हुई थी आपसे जो है चुटकी भर सॉन्ग पे कि ये जरा गाना पहचान के मुझे बताइए कि आखिरी कौन सा गाना है।

0: कुछ गाने जो है उन्हें सुन के ही पता चल जाता है कि ये जो है सूरज बड़जात्या जी की मूवी का है एंड इसमें माधुरी दीक्षित जरूर होगी. सो सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित टॉपिंग द चार्ट्स विद दिस अमेजिंग नंबर. एंड इसी के चलते आपसे जो है इसका जवाब जो है वो सुन लेते. कृष्णा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जूते दो पैसे लो हम आपके हैं कौन से. एंड एपी जी ने जो है जिम से पहले फोटो भेजी थी एंड उसके बाद अब शायद जिम से बाहर आ चुके हैं तो इन्होंने आंसर दे दिया है अब. ओके, ये उन्होंने कहा है दीदी तेरा देवर दीवाना नहीं, ये है जूते दो पैसे लो, मूवी का नाम आपने सही बताया है. एंड इसके बाद हारून जी का भी आंसर जो है वो देख लेते हैं, हम आपके हैं कौन, जूते दो पैसे लो बिल्कुल सही. निलोफर हुसैन जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, दूल्हे के सालियों. एंड फैजल जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. सो थैंक यू सो मच एवरी वन. एंड अस्मा जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे कैंडीज की फोटो दी क्योंकि मैंने ये कहा कि मुझे भूख लगी है, लेकिन आपके फोटो भेजने से कुछ नहीं होता क्योंकि भूख मेरी अभी भी इंटैक्ट है. फिलहाल ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आप इंजॉय करके आइए, मैं जरा जो है कुछ खाकर आती हूँ. स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो बिंदास
1: रेडियो.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:11 दैट इज 7:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
4: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा
5: मैं हूं अनिल कपूर रेडियो ओलिव जियो बिंदास
6: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
2: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

अजनबी तो देखो अब आप और मैं नहीं रहे, इतनी अमेजिंग गॉसिप्स जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं हम, खाने की फोटो एक दूसरे को भेज रहे हैं, जिम की फोटो भेज रहे हैं, आसमान की बादलों की फोटो भेज रहे हैं, अब अजनबी कहाँ रहे हो? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, अजनबी नहीं, अपना जो रिश्तेदार मुझे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, बुआ को छोड़कर। बुआ मैं नहीं बन सकती क्योंकि मैं कलेशी हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन कलेश से बचने के लिए, कलेश यानी किसी भी टाइप के एक कैसे मैं समझाऊं, किसी भी तरीके की राइट्स जो होती है एक इंसान की, उन्हें हैम्पर ना होने देने के लिए जो है कुछ रूल्स जो है उन्हें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। सो कदर इज़ इंट्रोड्यूसिंग अ स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर फॉर टैक्सीज एंड लिमोजीन्स। सो टैक्सीज और लिमोजीन्स में अब सर्वेलेंस जो है उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, कैमराज जो है वो टैक्सीज और लिमोजीन्स के अंदर लगाई जाएंगी ताकि ट्रिप जो है यानी जो ट्रिप हो रही है ड्राइव जो है उसे रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा सके, ताकि कोई भी कलेश कोई भी मैटर हो तो उसे जो है अच्छी तरीके से देखा जा सके रिकॉर्डिंग में एंड फिर फैसला लिया जा सके। द कैमराज विल ऑल्सो हेल्प एड्रेस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड वॉयलेशंस वाइल प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट सिक्योरिटी रिकॉर्ड इन केस ऑफ कंप्लेंट्स और रिपोर्ट्स। सो देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और मुझे लगता है यार ये तो बढ़िया ही चीज़ हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए था? वैसे नहीं होना चाहिए था कि कोई गुंजाइश ही नहीं, ऑफ कोर्स होना चाहिए था। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 12 महीने में 12 तरीके से आपको अगर कोई प्यार दिखा सकता है तो वो मैं दिखा सकती हूँ या फिर हमारे मीका पाजी दिखा सकते हैं। सो रेडी मूवी से मीका पाजी की आवाज में एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। एंड अगर आप भी वो इंसान है जिसने मेरी तरह ही डिंक चिका वाला स्टेप अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर किया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कह दीजिए कशिश मैंने भी किया ये वाला डांस 3311063। पर फिलहाल जो है ये ढिंक चुका वाला गाना इंजॉय करके आइए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बंदास

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

तो जी कैसा रहा? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कभी कभी पंजाबी गाने सुन के ना मजा सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार बस कोई जो है ऐसे गाने चलाते रहे और हमें मजा आता रहे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, काफी सारे लोग ना मुझसे कह रहे थे कि नेम गेम जो है वो थोड़ा सा जल्दी खेल लिया करो, तो बस वक्त हो गया है नेम गेम खेलने का। जल्दी से आपके पास 40 सेकंड है, अपना नाम जल्दी से टाइप कर दीजिए 3311063 पर मुझे भेज दीजिए एंड आपका जो नाम है वो हम सबके सामने जो है से पढ़ के बता देंगे। आइए देखते हैं किस किसने अपना नाम लिखना जो है वो शुरू कर दिया। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट जो है वो हम खेलने वाले हैं। अमित जी ने अपना नाम लिख दिया है, अमित, हाय अमित। एंड उसके बाद मुझे गार्गी जी ने अपना नाम भेज दिया है, एंड उसके बाद शिवा कुमार जी ने भेज दिया, नागेश जी ने भेज दिया, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही नेम गेम जो है वो हम थोड़ी सी देर बाद भी खेलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी अपने फ़ोन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको गुलाबी साड़ी वाला गाना जो है वो मैं सुनाने वाली हूँ, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ धमाल फोर से ये गाना। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

देखिए इनकी बेबी को भले ही भेज पसंद हो लेकिन हमारी बेबी को यानी ये जो आपकी बेबी यहाँ बैठ के आपसे बातचीत कर रही है इसे तो सिर्फ आप लोग पसंद हो। Welcome to 106.3 Radio Olive पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। एंड यार देखो ना कितनी छोटी सी बात है लेकिन अगर आप अगर किसी को एक बार बेबी बोलना शुरू कर दो तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। मतलब अगर जनरली मैं इसे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी नहीं कर रही हूँ, आप जनरली अगर लाइफ में अपने से छोटे लोगों को यानी अगर आपके ऑफिस में आपके इंटर्न्स हैं या आपकी कजिन्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं अगर या मतलब आपकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आप अगर उन्हें एक बार बेबी बुलाना शुरू कर देते हो देयर इज नो लुकिंग बैक। आप फिर उन्हें आप हर किसी को फिर पोलाइटली बेबी ही बोलते हो कि बेबी डोंट टच दैट बेबी कीप योर हैंड्स ऑफ दैट बेबी ड्रिंक वाटर। जनरली जिन लोगों को आप जो है केयर दिखाना चाहते हो या जो आपसे छोटे हैं उम्र में आप उनके तरफ जो है अपना प्यार दिखाना चाहते हो आप उनको रैंडमली बेबी कहते हो। और एक बार आपने सामने वाले को बेबी बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद आपने उनका नाम ले लिया तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप उस इंसान को जो है आप बहुत गुस्से में पुकार के बुला रहे हो। ये मेरा जस्ट ऑब्जर्वेशन है बिकॉज मैं जब इंटर्न थी एंड मेरे जो बॉसेस थे मेरे जो मैनेजर्स थे स्पेशली जो मेरी फेवरेट एक मैम थी वो मुझे ना हमेशा ऐसे ही करके बुलाती थी कि बेबी हम यहाँ जाने वाले बेबी मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो बेबी वाली शीट भेज दो बेबी ये मेल किया हुआ था। सो मुझे बेबी सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि रैंडमली एक क्लाइंट के सामने उन्होंने मुझे एक दिन मेरे नाम से बुला लिया कि कशिश ज़रा केबिन में आना। मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है ये मुझे आज मेरे नाम से क्यों बुला रही है। सो ऐसा होता है ये मैंने नोटिस किया है। बाकी इस बातचीत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की बात कर लेते हैं एंड दृश्यम की बात मैं आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि दृश्यम का ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो गया है एंड जैसे हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो साउथ वाली दृश्यम है उससे ये जो बॉलीवुड वाली दृश्यम है ये काफ़ी अलग होने वाली है। अजय देवगन पूरी एक नए यू नो पायदान पर इस मूवी को लेकर जा रहे हैं एंड एंडिंग अगर आपको लगता है कि यार साउथ वाली दृश्यम जैसी होगी तो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। 2 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है तो अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो मुझे ज़रा बताओ कि आपको कैसा लगा। फिलहाल जुगनी गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Dalat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 8:11 दैट इज 8:11 स्टे ट्यून्ड जी बता
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा
0: Hello to all the listeners of Radio Olive 106.3. Stay tuned. 106.3 Radio Olive
3: Geo Windows. बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

अलग टाइप का स्वैग है इस गाने में. मतलब फ्लाइंग जट बनाते हुए रेमी डिसूजा जी ने ये सोचा कि यार हम तो बस सुपरमैन या एवेंजर्स का अगला पार्ट ही बना रहे हैं. मतलब फ्लाइंग जट को हम इंडियन सुपर हीरो बना के रहेंगे, देसी सुपर हीरो. लेकिन मिजरेबली फेल हुए हैं वो. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखिए यार, आपको एंटरटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी नहीं है, रेडियो ऑलिव की भी है. एंड सिर्फ रेडियो तक नहीं, हम आपके ऑफिस में भी आकर आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, आपको रिजुविनेट करना चाहते हैं. बस इसीलिए हैप्पीनेस लाउंज हम आपके लिए लेकर आए, जहाँ पर आप अपने ऑफिस में या अपनी वर्क स्पेस में रेडियो ऑलिव के आरजेस को जो है इनवाइट कर सकते हैं. हाँ जी, बस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. आपको जो है HL यानी हैप्पीनेस लाउंज जो है उसका शॉर्ट फॉर्म HL लिखकर जो है हमें व्हाट्सएप करना है 3311063 पर, एंड अपने ऑफिस का नाम या अपना नाम लिखना है. हमारे तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा, एंड बस आपको इनवाइट करना है. एंड फिर हम आएंगे बहुत सारे अमेजिंग गेम्स लेकर फन फॉलिक मस्ती मजा करने के लिए आपके एम्प्लॉयज के साथ आपके ऑफिस में. सो जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए अपने ऑफिस को 3311063 पर अपना नाम और HL लिखकर. बाकी मैसेजेस की अगर बात करें तो मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रही थी ना कि यार मुझे कुछ भी बुला लो, बुआ

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
0: बातें नहीं।

0: एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
2: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

उदित नारायण और मधुश्री जी के आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिवर में हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, मतलब रोमांटिक जॉनर हमें पता है, हमें जो है एक्शन जॉनर पता है, हमें हॉरर भी पता है, कॉमेडी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस जॉनर को क्या कहते हैं जिसमें कुछ टीम्स मिलकर एक प्लान बनाती हैं एंड उसे एग्जीक्यूट करती हैं, जिसमें थोड़ा सा स्कैम होता है, थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग होता है, बेसिकली जैसे लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल में होता है वैसी जो मूवीज़ हैं, इनको क्या कहते हैं इस जॉनर को मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला जॉनर मुझे काफ़ी पसंद है। सो मैं जो है आपके लिए 5 जो है ऐसी मूवीज़ ढूंढ कर लाई हूँ जो ऐसे ही इस जॉनर से हैं एंड आपको जो है मज़ा आएगा अगर आपको ये वाला जॉनर जो है वो देखना पसंद है, यानी थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग हो एंड लास्ट में जाके जो है आपको लगे कि अरे अब तो फंस गए, लेकिन लास्ट में जो हमारी टीम है वो निकल आती है उससे। सो ऐसी मूवीज़ अगर आपको देखने का शौक है तो उसकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। सबसे पहली मूवी है बदमाश कंपनी। यस, आपको ये जो है मूवी ऐसा लगेगा कि यार ये तो फ्लॉप मूवी हो गई थी, लेकिन आप अगर इस मूवी को ध्यान से देखो तो आपके दिमाग में भी जो है ना ऐसे केमिकल जो है वो हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है कि यार ऐसा कुछ हमें भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मूवीज एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, इससे आपको इंस्पायर नहीं होना है। बाकी सेकेंड मूवी है स्पेशल 26, दैट इज स्पेशल 26। अक्षय कुमार एंड अनुपम खेर जस्ट नेल दिस अमेजिंग मूवी। ओके, एंड उसके बाद स्कैम 1992 रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है एंड स्कैम की मूवी है, आपको इंस्पायर नहीं होना है लेकिन आप देख के जो है इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद एक सबकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी रेड, एंड इसका जो है सेकेंड पार्ट भी आया था सो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब टिपिकल बॉलीवुड मूवी से हटके कुछ देखना है सो लकी भास्कर ज़रूर से देखिएगा, मैंने अभी रिसेंटली देखी है एंड मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। दुलकर सलमान इज सो गुड, सो अमेजिंग, सो ये वाली मूवी है। बाकी अगर आप सीरीज देखना चाहते हैं OTT रिलीज की अगर मैं बात करूँ सो फर्जी इज अ वेरी नाइस थिंग। सो एक बार ये सारी मूवीज आप देखिए, इनमें से अगर आप कोई देख चुके हैं एंड आपको रिव्यू देना है तो वो भी आप आके मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। एंड अगर इसी जॉनर की कोई और मूवी आपके पास है तो जल्दी बताओ, क्योंकि ये सारी तो मैंने देखी हुई है, अब अगले वीकेंड के लिए तो कुछ चाहिए ना मुझे। सो बताइए मुझे 3311063 पर अगर ऐसी ही कोई मूवी इसी जॉनर की आपके पास है। बाकी एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

0: बहुत ही अमेजिंग एंड एनर्जेटिक सा गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ शो एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त इवनिंग। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। सो जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना एंड मुझे याद करते रहना। रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल को जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको सभी आरजेज मिल जाएंगे। बाकी ऑलिव फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर अभी सुना रही हूँ, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इसे एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. ये
0: गाने का नाम ये आवारापन आवारा पन टू से आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। एंजॉय करो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास। फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुख वाकिफ अलखोर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट लव।

0: मिडनाइट लाउंज,
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.
2: Jio Bindas.
3: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

0: Midnight Lounge.
1: ये है Midnight Lounge.
2: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास। ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Morning and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
1: अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।